0: college kshanima hindi ma samachar de lekin reporteri le karashe
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सैफ फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और

अपने पुत्र प्रहस्त से नीति की बात तथा श्री राम से प्रीति करने का अनुरोध सुनकर रावण उसे झिड़क देता है। प्रहस्त को प्रतीति होती है कि मृत्यु के वशीभूत रोगी पर औषधि का कोई प्रभाव नहीं होता। रावण लंका की चोटी पर निर्मित अपने रंग महल में किन्नरों के गान तथा अप्सराओं के नृत्य का आनंद उठाने चल देता है। उधर सुबेल पर्वत पर श्रीराम सुग्रीव की गोद में सिर रखे अपने प्रियजनों विभीषण हनुमान लक्ष्मण आदि से मंत्रणा कर रहे हैं। पूर्वी क्षितिज पर चंद्रमा उदित हो रहा है जिसकी शोभा से सभी मुग्ध हैं। अनंत आकाश पर बिखरे तारों से मानो रात्रि रूपी सुंदरी ने अपना श्रृंगार किया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धर्म छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति में सुधार करें, टोल फ्री को बढ़ावा दें,

प्रधानमंत्री शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारा ने मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये पद हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन

0: दोनों साबित कर रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, शरीरम अध्यम खम धर्म साधनम, अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has asked people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी दुर्बल परिस्थितियों का कम से कम असर हो, क्योंकि ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्तियों की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक
2: Prime Minister Narendra Modi will go on a 6-day visit to United Arab Emirates UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy from Friday. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet the President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from the AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Guru and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sarma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be the NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the 2nd consecutive term for Mr. Sharma as Chief Minister and 3rd term for the NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Naveen among others. The NDA comprising the BJP Aham Gana Parishad, AGP and the Borderland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the Assembly polls, winning 102 seats in the 126-member House. The BJP bought 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Dumdum Municipality Recruitment Scheme.

एक मौके भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और

0: दिल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय

सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपिया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वही 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के कलनी सामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल

शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद बिन नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम

क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में

भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक

0: वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कंट्रोल ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनीतिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जलडंबू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन पर की थी और

इन्फॉर्मेशन। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है।

0: शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने बीसीबी को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। विलासन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खी के साथ है सरफरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान न हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।

0: ईटी प्रस्तुत करता है
1: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्राम पुटकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
1: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओ, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
1: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
1: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान और जिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोरखे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें।

0: योगेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है
1: जी। और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन योगेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है, या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
1: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें
0: जी। हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने
1: जी।
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो
1: जी।
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी, जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: आप भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
0: आग बरसाती धूप।
2: में चलते हैं। क्यों? वहाँ बहुत सारे आम हैं।
3: अच्छा,
2: तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
2: अच्छा,
3: अभी चलते हैं, जल्दी चलो,
2: धीरे से आ उठ जाएगी।
3: हाँ हाँ, धीरे से चलो ना।

0: माँ इतने ढेर सारे आम हैं, अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी
1: बुरा आम।
0: हाँ
1: चलो।

0: अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विक्रम, एक तुम भी खाओ। एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है।
0: वाह, मजा आ गया।
1: कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: धूप है जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं देख पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहाँ भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो। देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे। अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। मोहन मोहन,
2: पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होगा रहेगा। भाई ये भी कोई घर से निकलेगा कह रहे। देखा है कुछ गड़बड़ है। चलो देखो। अरे भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी। मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहेगा।
1: अरे मोहन मोहन, क्या हो गया तुझे। तू कुछ बोलता क्यों नहीं।
0: विद्या विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन मोहन मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है।
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया।
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए।
2: हाँ, हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं। मैं उठाता हूँ। ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।

0: गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लेटाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
2: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दू। लीजिए, डॉक्टर साहब ही आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
2: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब, लगता है इसे लू लग गई है।
2: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए,
0: इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता
2: हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब। और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती हो?
1: जी।
0: लाओ, अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: जी ऐसे।
0: लाओ, अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ, बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
0: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है। भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
0: बेटा, बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
0: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
0: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब, कैसे बच सकते हैं इससे?
0: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबाल कर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
0: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
2: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
0: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन का होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन का होश आ गया।
0: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
0: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर।

0: बरसाती धूप। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक्का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का। नमस्कार साथियों।
1: नमस्कार
2: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
1: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
2: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक्का।
1: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक्का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
2: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
1: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
2: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
2: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
1: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्व

राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्ण प्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा भी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़, तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जीरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: उनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माता नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः ऐसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था, और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहाँ पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और

0: गले ले लेने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें हथियारों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
1: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
0: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाने बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
1: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
0: वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलमित हो गए। लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
1: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए।
0: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का ताल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक के संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
1: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
0: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
1: इस कल्पनातीत शौर्य पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम मनोरंजन कार्यक्रम की शुरुआत करिए फिल्म जमीन आसमान आ गीत छे स्वरापुर छे लता मंगेशकर।

हमें आज आप सांभळी रह्या हता हिंदी फिल्मी गीतोनो कार्यक्रम मनोरंजन प्रसारण आकाशवाणीना भूज केंद्र परथी करवामां आव्युं। हवे प्रस्तुत छे लोक संगीत। आजे रजू करीए छीए काफी। कार्यक्रमनी शरूआत करीए इस्माइल मीरना स्वरथी।

0: उन्होंने बता बैठे हुए थे
1: जी जी
0: बैंक टू हाँ
1: अच्छा
0: एक जीते पहले ना पहले
1: जी जी
0: मतलब की दुनिया को छोड़ के
1: जी प्रकाश भाई खूब खूब आभार आप हेलो हेलो फोनिंग कार्यक्रम में फोन करो અને સંભાવ્ય હાથી મેરે સાથી ફિલ્મનું આપની પસંદગીનું
0: આભાર થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ થેન્ક યુ

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार आकाशवाणी
0: जी जी हेलो हेलो फोन इन कार्यक्रम आप कौन
1: हेलो मनोरंजन मंडल वाले कांजी भाई बात कर रहे हैं।
0: बहुत बीच से बाबू जी आपने हेलो हेलो फोन इन कार्यक्रम में
1: मेरे एक वास्तविक नाम आपका है
0: जी
1: मेरे भाई बहन के रघु भाई के प्रतीक भाई के
0: जी
1: मेरे भाई बहन खास मित्र है बॉक्स के पति दिगे मित्र है हमारे पुष्पक भाई नाम से
0: कांजीभाई संभळावीए अपनी पसंदगी नु आ गीत।

बड़ी खेद है कि मंत्री विश्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में

0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चार बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगास्वामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्य भाव पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुदीप बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुदीप बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट के नाम से अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपए नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड डर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के समय सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1,041.74,975 पर जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 1,519 पर गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by our civilians. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second.

शर्मा अंते अविनाश वासनी रचना आ साथे सुगम संगीत नो कार्यक्रम समाप्त थाय छे। कार्यक्रम नो प्रसारण आकाशवाणी ना अमदावाद वडोदरा राजकोट अने भुज केन्द्र थी करवामां आव्युं। बपोर ना 1:20 થવા આવી છે। હવે થોડી જ વારમાં ગુજરાતીમાં સમાચાર આપ સાંભળશો।

नमस्कार श्रोताओं, जय भारती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, यानी कि इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे। पौधों की हिफाजत के लिए उनकी स्वास्थ्य का

नुकसान होगा, क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं वो अन्न के पौधों को कीटक और कीटाणु खा जाते हैं। प्लांट के रोगों की वजह से भी अन्न का जो उत्पादन है उस पर असर पड़ता है। और आज जब दुनिया में 600 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तब दुनिया की भूख को मिटाने के लिए हमें पौधों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और पौधों के स्वास्थ्य का जो पहला जो काम होता है वो बायोडायवर्सिटी को संभाल रखना है। आइए सुनते हैं एक बार फिल्म का गीत अनुराधा और भूपिंदर की आवाज में, गीत विनोद पांडे, संगीत रघुनाथ शेठ।

दोस्तों, आज है इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय परिचारी का दिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह शुरू किया था। इस साल का जो थीम है, हमारी नर्स हमारा भविष्य, समर्थ नर्स जीवन बचाती है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को खिलाना फिल्म में। गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल।

यह कार्यक्रम आकाशवाणी के अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भोजगंज से प्रसारित।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं अमितलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: ডক্টৰ শৰ্মাৰ কে সাথ 4 বিধায়কো নে ভি মন্ত্ৰী পদ কি শপত লি।

में भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयन ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। केरल सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर और नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति

0: उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्था

0: पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

शब्दों में महती याद हो आकाशवाणी में गौरव बनता नव वर्ष की उजवनी ने भाग रूपे आकाशवाणी ने प्रसारण यात्रा में योगदान आपनार प्रसारण कर्मी साथ बातचीत पर आधारित विशेष कार्यक्रम शब्दों में महती

अब संगीतकार गुजराती गीतों आकाशवाणी अमदावाद और द्वारा राजकोट ने भूज समय बपोर में त्रण थया छे। अमारी बपोर में सभा अहीं समाप्त थाय छे। जो कि आकाशवाणी की डीटीएफ और गुजराती प्रसारण में गुजराती फिल्मी गीतों आप मिली सकशो। अमारी सांजनी सभा प्रारंभ सांजे 5 वगे आपने फरीथी मिलीशू। त्यां सुधी रजा आपशो। नमस्कार।

संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण उम्मीदवारों की जांच

0: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: आईसीएआर समय को आगे जाते हैं, आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार के सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसएसआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारे अर्थनीति को मजबूत करना है, हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमा सैनी ने इंडिया पोस्ट की अगली पीढ़ी के डिजिटल प्लेटफॉर्म एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी के दूसरे चरण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी किस प्रकार शाखा कार्यालयों को वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा सैनी ने कहा कि AI का एकीकरण इंडिया पोस्ट को बड़ी मात्रा में परिचालन डेटा संसाधित करने, परिणामों की भविष्यवाणी करने, नियमित कार्यों को संचालित करने और डाक नेटवर्क में सेवा वितरण को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में मदद कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथे वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक और संरचना सलाहकार समिति न्यायालय में और संरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट से चरण बोरा शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा।

0: गया पप्पा, आप फाइल नहीं ले?
1: बेटा एडमिशन माटे कॉलेज में अब अपने डॉक्टर और जाति नो प्रमाण पत्र जमा करवाने छे। कचेरी ए जाऊं छु के लंबी लाइन होशे, जल्दी जवू पड़शे।
0: पप्पा हवे लाइन में नथी उभा रहेवानु, ऑनलाइन थवानु छे।
1: शुं बात करे छे?
0: हां पप्पा, डिजिटल गुजरात पोर्टल पर थी घरे बैठा अर्जी पण थशे अने दाखलो पण मळी जशे।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ना नेतृत्व में अने माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ना प्रयत्न ना फल स्वरूपे हवे आवक नो दाखलो, जाति नो प्रमाण पत्र अने राशन कार्ड ने लगती दृष्टि बधु सेवाओ हवे ऑनलाइन। तो बस घरे बैठा अर्जी करो अने तमारा दस्तावेजो व्हाट्सएप पर मेलो। आजे ज मुलाकात लो www.digitalgujarat.gov.in नी। सुगम डिजिटल गुजरात, लाइन थी ऑनलाइन।
3: અને હવે સમજશો લતા મંગેશકર અને મોહમ્મદ રફીએ ગાયેલું ચોર મચાય શોર ફિલ્મનું ગીત।

0: सरकार आया तो हमें कचेरी जमा नहीं ने फोन पर फटाफट काम।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने प्रयत्नों ने फर्ज बनते हमें आवाही राशन जाति न प्रमाण पत्र राशन कार्ड ने लगती 20 की बधु सेवाओं हमें ऑनलाइन तो बस घरे बैठा अर्जी करो तुम्हारा दस्तावेज लो व्हाट्सएप पर मैं हूँ अर्जी मुलाकात लो
2: छह प्यारे दुश्मन कलाकार आशा भोसले।

0: तव्हांजो स्वागत आहे जिन में असां अञा करे खणी आया आहियूं आखे अठवाड़ीअ जा महत्व जा समाचार। अॼु जे अंक साथे अमैया अशरफ मथवाणी ऐं मुबेराणी परेश मारू।
1: नमस्कार श्रोता मित्रो,
0: परेश पाक कच्छ जा कुड़ो वावाड़ी अॼु जे अंक में थोरो ख़ासि आहे। पहले इन विशेष श्रोताए खे ॻाल्हि करियो।
1: कच्छ में जून मास थी वफ़्ती गणतरी चालू करे में अचींदी। 4000 थी वधु अधिकारी अने कर्मचारी इन कामगिरी में थींदा शामिल। गांधीधाम अंजार में गर्मी जो पारो 45 डिग्री पुजे वियो। हीटवेव जी आगाही के ध्यान में रखी ने तंत्र द्वारा एक्शन प्लान तैयार करे में आयो। रमत गमत के प्रोत्साहन डेला करे कच्छ में 105 जितला रमत गमत मैदाने के नीम करे में आया। बनी में घास चारी जी तंगी सर्जादा वन तंत्र तरफ थी घास जो वितरण करे में अचे तेरी पशुपालक क्यों मांग। रामपुर तालुके में 42 गामे में नर्मदा जे वधारे जा 1 मिलियन एकड़ फीट पानी पहुंचायला करे पाइपलाइन योजना के राज्य सरकार तरफ थी मलई वहीवटी मंजूरी। कच्छ में जून मास थी वस्ती गणतरी जी कामगिरी चालू करेला करे तैयारियों करे में अची रही हुई। कच्छ में 4000 थी वधु अधिकारी अने कर्मचारी गणतरी कार तरीके हिन कामगिरी में जोड़ंदा। कच्छ सहित गुजरात में स्थानिक स्वराज्य जी चूंटणी जाहिर थे पुठियां वस्ती गणतरी जी अमलवारी पाछी ठेलाए में आवी हुई। चूंटणी पूरी थींदा हाणे वस्ती गणतरी जी कामगिरी जी तैयारी जो धमधमाट चालू थी वियो आहे। वस्ती गणतरी में पहली वक़्त डिजिटल रीते कामगिरी करे में अचींदी। मोबाइल मार्फत गणतरी कार घरे घरे वञी ने रियल टाइम डेटा भेटो कंदा अने ही डेटा सीधो सेंट्रल सर्वर में अपलोड थींदो। नागरिक लाइ करे स्व गणतरी जो विकल्प पण उपलब्ध कराए में आयो आहे जंहिंमें नागरिक OTP मार्फत लॉग इन करे अने पंहिंजी विगत भरे सघे था। गणतरी कार तरफ थी नागरिक खे 33 प्रकार जा सवाल पुछी में अचींदा। वस्ती गणतरी जो पहलो तबको जून जुलाई में पूरो करे में अचींदो अने ॿियो तबको फेब्रुआरी थी मार्च 2027 दरमियान पूरो करे में अचींदो अने इन पुठियां वस्ती गणतरी जा आंकड़ा जाहिर करे में अचींदा। 2011 जी साल में छेले वस्ती गणतरी करे में आवी हुई जंहिंमें 20.93 लख कच्छ में वस्ती नोंदाणी हुई। हिन वक़्ते जिले में वस्ती गणतरी जो आंकड़ो 5 लख पार करे तरी शक्यता आहे। कच्छ में कुल वस्ती में जा 3% शहरी अने 70% ग्रामीण वस्ती छेले वस्ती गणतरी जे आंकड़े में नोंदाणी हुई। कच्छ में छेला केतिरा ॾींहं थी भारी गर्मी जो अहसास थी रहियो आहे। हवामान विभाग कच्छ में ॿ ॾींहं लाइ करे ऑरेंज अलर्ट जारी करे आहे। गईकाल अंजार गांधीधाम में तापमान जो पारो 45.4 डिग्री पहुता हिन ऊन्हारे जी सीज़न जो सौथी गरम ॾींहुं अनुभव में आयो हो। राज्य में 45.5 डिग्री साथे सुरेंद्र नगर पहले क्रम ते रहियो हो। हिन पुठियां कंडला एयरपोर्ट ॿीजे नंबर ते रहियो हो। हिन वरे ऊन्हारे जी सीज़न में गर्मी जो वधु अनुभव थी रहियो आहे। हवामान विभाग जी आगाही अनुसार आगामी ॾींहं में भुज में पण तापमान 44 थी 45 डिग्री ते पुजे तहिड़ी संभावना आहे। कच्छ में वधती गर्मी जे कारण जनजीवन ते भारी असर भोगी आहे। दोपहर जे समय जाणे कर्फ्यू जहिड़ो माहौल वे तेरो नेरेला मिले थो। पूर्व कच्छ जे गांधीधाम आदिपुर अंजार जहिड़े शहर में गर्मी जो पारो वधु आहे। तंहिंखे ध्यान में रखी ने गांधीधाम महानगर पालिका अने चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन तरफ थी ख़ासि हिट एक्शन प्लान बणे में आयो आहे। गांधीधाम शहर में 23 थी वधु स्वैच्छिक संस्था तरफ थी विविध विस्तार में पाणी जी परब चालू करे में आई आहे। आरोग्य विभाग तरफ थी दरेक सेंटर ते ORS कॉर्नर अने रामबाग हॉस्पिटल में अलॻि थी पथरीअ जी व्यवस्था करे में आई आहे। कच्छ में रमत गमत के प्रोत्साहन डेला करे कच्छ कलेक्टर आनंद पटेल महत्व जो निर्णय क्यों हुयो। कच्छ जे नव तालुके में 105 जिला रमत गमत मैदान के नीम करे में आया आई। गुजरात में पहली वक़्त अहिड़ी पहल करे में आई आहे। हिन निर्णय थी ग्रामीण स्तर ते खिलाड़ी अने सेना पुलिस जी भर्ती तयार करंदड़ युवान खे स्थानीय कक्षाए ते मैदान मिले रहंदो। सुनो हिकिड़ो विशेष अहिवाल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने की रमत गमत के प्रतिभा के गोती ने उनके वैश्विक मंच पूर्व पड़े खेलो इंडिया यूथ गेम्स को प्रारंभ कराया हो। इस विजन के अनुसार ने गुजरात में पण खेल महाकुंभ द्वारा रमत वीरे के प्रोत्साहन देने में अची रही है जिनके परिणाम में आज गुजरात के अनेक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय देश के नाम रोशन कर रहा है। आगामी वर्ष 2003 में जैसे गुजरात कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने आगे बढ़ रही है तेरे स्पष्ट पर उन दिशा में हम अत्यंत परिणामदायी और ऐतिहासिक पहल આજે આધુનિક અને ડિજિટલ યુગ ને બાળકો જે બાળકો મોબાઈલ સ્ક્રીન સુધી સીમિત થઈ ગયું હોય

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। सिंधी ख़बरुनि सां गॾु मां दीपा गुरनानी। सभ खां अवल अहम ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुमे ॾींहं खां यूएई ऐं यूरोप समेत पंजनि ॾींहनि जे दौरे ते रहंदो। मर्कज़ी मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान चयो, राष्ट्रीय तहलीम नीति 2020 जे ज़रिए सरकार मादरी ॿोली ऐं भारत ज्ञान रिवायतुनि खे औजे ॾेई रही आहे। सुप्रीम कोर्ट जे मुख्य जज सूर्यकांत अदालतुनि जे जदीदीकरण जे मक़सद सां उच सतही कमेटी क़ाइम कई। हिमंता बिस्व शर्मा लगातार ॿियों भेरो असम जे मुख्यमंत्री तौर कसम जी रस्म अदा कई। ऐं आईपीएल क्रिकेट में अॼु शाम गुजरात टाइटन्स जो मुक़ाबिलो सनराइज़र्स हैदराबाद सां थींदो। ख़बरूं तफ़सील सां ॿुधंदा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जुमे ॾींहुं पंजनि मुल्कनि जी यात्रा ते रवानो थींदो। पहिरें तबिके में जुमे ॾींहुं मुतहद अरब अमीरात पहुचंदो ऐं राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान सां मुलाक़ात कंदो। ऐं ॿिए तबिके में प्रधानमंत्री नीदरलैंड पहुचंदो, जिते हू जनाब नीदरलैंड जे नरेश विलियम अलेक्ज़ेंडर ऐं महारानी मैक्सिमा सां मुलाक़ात कंदो। विदेश वज़रा जे तर्जुमान रणदीप जयसवाल चयो त प्रधानमंत्री जी यात्रा जे दौरान शक्ति हिफ़ाज़त समेत केतिरनि ई खितनि में भाङेभाई वारी मज़बूत थींदी। श्री जयसवाल चयो,
1: पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का संयुक्त अरब अमीरात का होगा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा बयाने रिश्ते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा सुरक्षा बहुत अहम एक उसका भाग्य है। और इस दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश है, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यही अभी ये देश किसी के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इको सिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन कंडीशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वह सब सहकारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री के दौरे का एक मुख्य आधार है।
0: मर्कज़ी तहलीम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अॼु चयो त राष्ट्रीय तहलीम नीति 2020 ज़रिए सरकार मादरी ॿोली, भारत ज्ञान परंपराउनि ऐं एआई ज़रिए तहलीम ते आधारित खोजना ऐं नए रीत खे लगातार वधारो ॾेई रही आहे। हुन चयो त ग्लोबल साउथ जा मुल्क विश्वास, हल ऐं अॻवानी जे उमेदुनि सां गॾु अॼु भारत तरफ़ ॾिसी रहिया आहिनि। श्री प्रधान ICSSR जे 58वें स्थापना ॾींहं जे मौके ते इहा ॻाल्हि चई। श्री प्रधान चयो,
2: ICSR समय को आगे जाते हैं, आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी लक्ष्य नीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट जे मुख्य जज सूर्यकांत मुल्क भर जी अदालतुनि जे जदीदीकरण जो खाको तयार करण लाइ जज अरविंद कुमार जी सिधारत में हिकु उच सतही कमेटी क़ाइम करण जी पधिराई कई। इन वास्ते सरकार वटां 40,000-50,000 करोड़ रुपियनि जी विछ खे यकीनी बणाइण लाइ चयो वियो आहे। इंसाफ़ी बुनियादी ढांचा सलाहकार कमेटी अदालतुनि में बुनियादी ढांचे सां लाॻापियल घटिताइनि खे दूर कंदी। कमेटी 31 ऑगस्ट ताईं प्रधानमंत्री जे आर्थिक सलाहकार काउंसिल जे मेंबर संजय सान्याल खे घुर्बल फंडनि जी तफ़सील पेश कंदी। भारतीय जनता पार्टी जे बर्ख अॻवान हिमंता बिस्व शर्मा लगातार ॿियों भेरो असम जे मुख्यमंत्री तौर कसम जी रस्म अदा कई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गुवाहाटीअ में मुंतज़िम कसम अदायगी समारोह में डॉ शर्मा खे पद ऐं राज़दारीअ जी कसम खणाई। डॉ शर्मा सां गॾु चयनि विधायकनि जे मंत्री पद वास्ते कसम खणी। इन में भाजपा जो रामेश्वर तेली ऐं अजंता नियोग ऐं असम गण परिषद खां अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट खां चरण बोरा शामिल आहिनि। इन मौके ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, हिफ़ाज़ती मंत्री राजनाथ सिंह समेत केतिरा ई मर्कज़ी मंत्री ऐं भाजपा हुकुमरान राज्यनि जा मुख्यमंत्री बि समारोह में हाज़िर हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असम

0: रूप में नेता सम वटण ते डॉक्टर हेमंता बिस्व शर्मा के मन मुबारकूं ॾिनियूं आहिनि। ख़बरूं तव्हां आकाशवाणी तां ॿुधी रहिया आहियो। ही ख़बरूं तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात ते ॿुधी सघो था। वधीक ख़बरुनि जे लाइ तव्हां असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in खे फॉलो करे सघो था। अवामी खिते जे बैंकुनि 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपियनि जो हिन ताईं जो सभ खां वधीक ख़ालिस मुनाफ़ो दर्ज कयो आहे। इहो लगातार चोथो साल आहे जॾहिं बैंकू फ़ाइदे में आहिनि। मर्कज़ी माली वज़रा चयो त ही नुमाउ तेज़ीअ सां वधंदड़ भारत अर्थव्यवस्था जे कर्ज़ ज़रूरतुनि खे मुकमल करण में अवामी खितनि जे बैंकुनि जी मज़बूती ऐं स्थिरता खे ॾेखारे थो। वणजे उद्योग मंत्री पीयूष गोयल चयो त भारत आर्थिक तकनीकी तोड़े भू राजनीतिक हर तरह जे मुश्किलातुनि जो सामनो करण में सघियारो आहे। नई दिल्ली में मुंतज़िम CII सालाने वापार शिखर सम्मेलन 2026 में हुन साहिब चयो त टुटल भू राजनीतिक ऐं कारोबारी हालतुनि सबब दुनिया हर ॾींहुं मुसीबतुनि जो सामनो करे रही आहे, पर भारत लगातार ख़राब हालतुनि खे मौक़नि में तब्दील करे रहियो आहे। पेट्रोलियम ऐं कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अॼु चयो त ओलह एशिया जंग जे विच में भारत पंहिंजे घरेलू LPG उत्पादन खे अटकल 36,000 टन हर रोज खां वधाए करे 54,000 टन कयो आहे। श्री पुरी नई दिल्ली में सालियाने वापार शिखर सम्मेलन 2026 खे ख़िताब कंदे चयो त जिते केतिरनि मुल्कनि खे गुज़िरियल कुझु महीननि में आसमान छुहंदड़ क़ीमतुनि ऐं ॿाहिरां पदार्थ जी कमीअ जो सामनो करणो पियो आहे, उते भारत घरेलू क़ीमतुनि खे क़ाइम रखण में कामयाब रहियो आहे। श्री पुरी चयो
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मोज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्था करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: राष्ट्रीय तैलीम एजेंसी NTA तैलीम में मेडिकल दाखिला वास्ते टे महीने मुंतज़िम नीट UG 2026 इम्तिहान रद्द करण जो फैसलो वरितो। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसीअ चयो आहे त इहो फैसलो शागिर्दनि जे मुफ़ाद तौरु राष्ट्रीय तैलीम सिरिश्ते में विश्वास खे ध्यान में रखंदे वरितो वियो। CBI ओलह बंगाल जे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारीअ जे ज़ाती मददगार चंद्रनाथ रथ जे कत्ल जी जांच शुरू कई आहे। राज्य पुलिस जी सिफारिश ते एजेंसी अॼु सरकारी तौर ते मामले जी जांच शुरू कई आहे। राज्य पुलिस CBI खे केस डायरी सौंपण जी तयारी करे रही आहे। तमिलनाडु जे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय स्कूलनि कॉलेजनि पूजा वारनि जन ऐं बस स्टैंडनि वेझो आयल रेस्की शराब जा दुकान बंदि करण जो हुकुम ॾिनो आहे। राज्य सरकार चयो त 4,675 रेस्की शराब जा दुकान हली रहिया आहिनि। उन्हनि मां स्कूलनि कॉलेजनि ऐं पूॼा वारनि जायुनि ऐं बस स्टैंडनि खां 500 मीटर जे दायरे में 717 दुकान ॿिनि हफ़्तनि अंदरि बंदि करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। आबुआ महकमे सुभाणे ताईं गुजरात विच महाराष्ट्र मराठवाड़ा राजस्थान ऐं ओलह मध्य प्रदेश जे कुझु जायुनि ते लू लॻण जा आसार ज़ाहिर कया आहिनि। असम में मेघालय में तेज बरसात जो ऑरेंज अलर्ट जारी कयो वियो आहे। IPL क्रिकेट में अॼु गुजरात टाइटन्स जो मुक़ाबलो सनराइज़र्स हैदराबाद सां अहमदाबाद जे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 खां शुरू थींदो। आख़िर में अहम ख़बरुनि ते नज़र विझंदासीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमे ॾींहं खां UAE ऐं यूरोप समेत 5 ॾींहनि जे दौरे ते रहंदो। मर्कज़ी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चयो राष्ट्रीय तैलीम नीति 2020 ज़रिए सरकार मादरी ॿोली ऐं भारतीय ज्ञान रिवायतुनि खे उहिदे ॾेई रही आहे। सुप्रीम कोर्ट जे मुख्य जज सूर्यकांत अदालतुनि जे जदीदीकरण जे मक़सद सां उच सतही कमेटी क़ाइमु कई। हेमंता बिस्व शर्मा लगातार ॿियो भेरो असम जे मुख्यमंत्री तौरु कसम जी रस्म अदा कई। IPL क्रिकेट में अॼु शाम गुजरात टाइटन्स जो मुक़ाबलो सनराइज़र्स हैदराबाद सां थींदो। आकाशवाणी तां सिंधी

0: Rajaranjo, Evo Ankite Samaptyo Namaste.
1: आकाशवाणी भुज समाचार अशरफ मथवाणी वाजेज। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।

0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध है और देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर

होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइम्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे आज ना मुख्य समाचार। भारत आगामी सप्ताह ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक नु यजमान बनशे। आज आंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की उजवणी निमित्ते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए नर्सिंग व्यवसाय साथ जोड़ायेला 15 लोगों ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित कर्या। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले नर्सिंग क्षेत्र साथ जोड़ायेला तमाम कर्मयोगियों ने शुभकामनाओं पाठवी। राष्ट्रीय परीक्षा संस्था एनटीएए आरोग्य शिक्षण में प्रवेश माटे गत 3 मे लेवायेली नीट एटले के राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा रद्द करवानो निर्णय कर्यो। राज्य में आगामी 1 जून थी वस्ती गणतरी पहला तबक्का प्रारंभ थशे। 1 થી 30 જૂન सुधी नियुक्त जनगणना अधिकारी घरे घरे जईने माहिती एकत्रित करवानी गोरियादीनी कामगीरी हाथ धरशे। कच्छ नगरियाकांठे ड्रग्स मेळवानो सिलसिलो यथावत। अबड़ासा नजीक खुड़ा गाम पास थी बिनवारसो चरस 10 पेकेट मळी आव्या। जिला कलेक्टर आनंद पटेल द्वारा विविध सरकारी कचेरी ने व्यापक स्तरे सरकारी जमीन की फाड़वणी कराई। कुल 56 जमीन फाड़वणी हुकम हेठ 26,72,498 चौरस मीटर जमीन न हुकमों कराया। कच्छ और पाटण जिला वन विभाग की कामगी ने वु सुदृढ़ बनावा और पर्यावरण जतन पड़कारों से सचोट रोडमेप तैयार करने हेतु की कच्छ वन वर्तुड़ हेठ एक विशेष चिंतन शिबिर आयोजन करायु। पूर्व कच्छ जिला में कायदो और व्यवस्था की परिस्थिति वु सुदृढ़ बनावा माटे जिला पुलिस द्वारा सवार 9 થી મધ્યરાત્રિ सुधी खास ड्राइव नु आयोजन करायु। ड्राइव दरमियान जाहिरनामा भंगना 56 केसों शोधी काढ़वामां आव्या। अंजार पुलिस गुम थे 15 जेटला कीमती मोबाइल फोन शोधी मूल मालिकों ने परत सौंपया। कच्छना छात्रों फूटबॉल प्रत्ये रस केळवे अने आ क्षेत्रे प्रगति करे ते माटे गांधीधामना रमतगमत संकुल खाते कच्छ फूटबॉल क्लब एकादमी द्वारा समर कैम्पनुं आयोजन। मुख्य समाचार पूरा थया।

मैले प्रसिद्ध गायली सहित राखिने गजल साथै आजनो हिन्दी गीत गजलनो कार्यक्रम समाप्त गरिए छे। आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा बराबर 7 बजे 10 मिनट आप सुन रहे शो प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार रीता बेगा वांचे छे। सौप्रथम मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि साइबर सुरक्षित भारत बनाऊंगा, सरकार सतत प्रयत्नशील। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा देश में डेढ़ महीने में आयात में वृद्धि होगा, पूर्ता विदेशी मूल्य में भंडार। देशभर में तेजी में हवाई नीट परीक्षा रद्द, पेपर लीक घटना में शामिल लोगों ने सजा की राशि। भारत में आगामी 14-15 तारीख की ब्रिक्स देशों ने विदेश मंत्रियों ने एक बैठक। भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने थाईलैंड ओपन 2026 बैडमिंटन स्पर्धा में जीत की भारत में विजय प्रारंभ करायो। समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहा है कि साइबर सुरक्षित भारत बनाने माटे सरकार सतत प्रयत्नशील छे। तेमणे भार मूक्यो कि साइबर बनावने रोकवा माटे म्यूल खाताओ एक मोटो पड़कार छे। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आईफोरसी आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब साथ एक समझौती करार पर हस्ताक्षर कराया। आ करार थी साइबर सक्षम नाणाकीय छतरपिंडी नो सामनो करवा अने बैंकिंग अने डिजिटल चुकवणी इकोसिस्टम में मूल खाताओं ने घटाड़वामां मदद मळशे। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री शाह जणाव्युं के आ पगलाथी आईफोरसी ने शंकास्पद रजिस्ट्री में एआई संचालित छतरपिंडी शोध सीस्टम में डेटा नाखी छुपाये मूल खाताओं ने झड़पी शोधी दूर कर। गृहमंत्री कहा कि आ व्यवस्था नागरिकों ने साइबर गुना सामने ढाल तरीके सेवा आपशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी यूएई मुलाकात अंगे विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणवीर जायसवाल जणाव्युं कि तेमनी आ मुलाकात दरमियान ऊर्जा और सुरक्षा पर विशेष चर्चा थशे। तेमणे एम पण कह्युं कि भारत यूएई साथ बहुपक्षीय संबंधों धरावे छे अने ऊर्जा सुरक्षा तेनो एक आवश्यक भाग छे। तेमणे उमेर्युं कि बंने देशों वच्चे व्यापार और रोकाण वधारवा पर पण चर्चा थशे। प्रधानमंत्री ने आगामी विदेश यात्रा अंगे सांभळी एक अहेवाल।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारे उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे उसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश है, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा, यहाँ अभी ये देश किसी के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इको सिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे है। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब सरदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: वाणिज्य में उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जणाव्युं कि भारत आर्थिक टेक्नोलॉजिकल के भू राजकीय तमाम अवरोधों सामे पोताने मजबूत बनावा सक्षम छे। नवी दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार समिट 2026 में बोलता तेमणे कह्युं कि विभाजित भू राजकीय और व्यापारिक परिस्थितियों ने कारणे विश्व दररोज कटोकटी नो सामनो करी रह्युं छे, परंतु भारते सतत प्रतिकूलता ने तक में रूपांतरित करी छे। आंतरराष्ट्रीय नाणाकीय भंडोळ धोरणों ने उल्लेख करता तेमणे कह्युं कि देश में हाल में लगभग 11 महीना की आयात ने आवरी लेवा माटे पूरतो विदेशी हूंडिया में भंडार छे, जे देश ने वैश्विक स्तरे खूब मजबूत स्थिति में राखे छे। भारतीय आर्थिक मूलभूत बाबतों ने मजबूत बनाता श्री गोयले जणाव्युं कि देश क्यारे दबाण हेठ झुक्यो नथी अने पड़कारजनक समय में हमेशा मजबूत बन्यो छे। सरकारे कह्युं छे कि कथित नीट पेपर लीक घटना में संडोवायेला लोगों ने पकड़ने जेल में धकेली देवामां आवशे, जेथी विद्यार्थियों ने भविष्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़े। नवी दिल्ली में नीट परीक्षा रद्द करवा अंगे एक पत्रकार परिषद ने संबोधता राष्ट्रीय परीक्षा संस्था एनटीए ना महानियामक अभिषेक सिंह जणाव्युं कि एजेंसी विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा फी नी रकम परत करशे। तेमणे कह्युं कि एनटीए विद्यार्थियों माटे फरीथी परीक्षा लेशे अने ते न्याय रीते लेवामां आवशे अने फरीथी परीक्षा माटे कॉलेज वधारानी फी लेवामां आवशे नहीं।
2: अगर कोई इस तरह से चोरी करके परीक्षा देगा तो वह उनके लिए फेयर नहीं है जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके हित में ध्यान रखते हुए हमने यह कड़ा निर्णय लिया कि हम यह संदेश दे सके हर उस क्रिमिनल को, हर उस गैंगस्टर्स को, कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो उसको एनटीए सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको पकड़ेंगे, उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज जणाव्युं कि राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020 द्वारा सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओ अने एआई संचालित शिक्षण पर आधारित संशोधन अने नवीनता ने सतत प्रोत्साहन आपी रही छे। भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद आईसीएसएसआर ने 58वां स्थापना दिवस ने संबोधित करते वक्त तिरंगा बात करी। आईसीएसएसआर ने प्रशंसा करता मंत्री कहा कि यह संगठन भारतीय दृष्टिकोण से सामाजिक विज्ञान संशोधन ने नई दिशा आपने महत्वपूर्ण कार्य कर रही है।
2: आईसीएसआर समय को आगे जाते हैं, आने वाले 10-15 साल भारत

0: जिसको ध्यान देना पड़ेगा कि ICSSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमें व्यक्ति मुक्ति को मजबूत करना है, हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
1: समाचार आप आकाशवाणी पर सुन रहे हैं। शो आज समाचार में जीवन प्रसारण आप हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गुजरात पर भी सुन सकते हो। यदि समाचार मिलते हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/jio और हमारा एक्स हैंडल AIR News_WAD ने फॉलो कर शो। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जणाव्युं हतुं के सरकारी कामदारों माटे सामाजिक सुरक्षा कवरेज नो विस्तार वधार्यो छे अने देशना उद्योगों पर अनुपालन बोझ घटाड्यो छे। श्री मांडविया आज नवी दिल्ली में CII वार्षिक व्यापार समिट 2026 ने संबोधता मुजब कहूं। तेमणे जणाव्युं के सामाजिक सुरक्षा कवरेज 290 मिलियन लोकोथी वधीने हालमां 940 मिलियन थयुं छे। तेमणे जणाव्युं हतुं के सरकार गरीब केन्द्रित, खेडूत केन्द्रित अने उद्योग केन्द्रित बनवा माटे प्रतिबद्ध छे। गुजरात में आगामी 1 जून थी वस्ती गणतरी 2027 ना पहला तबक्का प्रारंभ थशे। गांधीनगर में पत्रकार परिषद ने संबोधता वस्ती गणतरी नियामक सुजल मल्होत्रा कहूं कि आगामी वस्ती गणतरी संपूर्ण रीते डिजिटल माध्यम थी कराशे। तेमणे कहूं कि पहला तबक्का हेठ आवास की स्थिति, परिवार की विगत, पीवाने पानी का स्त्रोत, शौचालय की सुविधा और अन्य अस्कारत सहित कुल 34 जेटला प्रश्न पूछवामां आवशे। तेमज घर लादी और मकानों की गणतरी कराशे। उपरांत नागरिकों आगामी 17-31 मे सुधी अधिकृत पोर्टल पर स्व गणतरी एटले के सेल्फ एलिमिनेशन विकल्प उपयोग कर विगतों जाते भरी सकते। भारत में न्यायमूर्ति सूर्यकांत देशभर की अदालतों ने आधुनिकरण में ब्लू प्रिंट तैयार करने और आम 40-50 हजार करोड़ रूपया सरकारी फाइलों में सुरक्षित करने एक उच्चस्तरीय समिति की रचना करने की जाहरात की। सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश अरविंद कुमार आ समिति की अध्यक्षता करते। आ नियत मालकागत सलाहकार समिति सरकार तरफ से नोधपात्र नाणकीय सहाय द्वारा अदालतों में मालकागत खामियों दूर करते। भारत आगामी 14-15 तारीखे ब्रिक्स देशों ने विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजन करते। आ बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करते। आज नई दिल्ली में मीडिया ने माहिती आपता विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणधीर जयसवाले जणाव्युं कि ब्रिक्स ने विदेश मंत्रियों और सभ्य और भागीदार देशों प्रतिनिधिमंडल वराओ आ बैठक में भाग लेते। उम्मीद कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मिलते। श्री जयसवाले जणाव्युं कि बैठक दरमियान ब्रिक्स सभ्य देशों विदेश मंत्रियों परस्पर हित में वैश्विक और प्रादेशिक मुद्दों पर विचारों आदान प्रदान करते। जाहिर क्षेत्र की बैंकों ने वर्ष 2025-26 में सतत चौथा वर्षे 1,98,000 करोड़ रूपया अत्यार सुधी सौथी उच्च चोखो नफो नोधायो। केन्द्रीय नाणा मंत्रालय जणाव्युं कि झड़पथी विकसता भारतीय अर्थतंत्र ने धिराण जरूरियातों ने टेको आपवा माटे जाहिर क्षेत्र की बैंकों की स्थितिस्थापकता, स्थिरता और संस्थाकीय क्षमताओं वधी छे। बेडमिंटन में भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज थाईलैंड में बैंकॉक में नीमी बुटा स्टेडियम खाते रमाई रहे थाईलैंड ओपन बेडमिंटन स्पर्धा में जीत थी शानदार शुरुआत करी। भारत ने आ जोड़ी इंडोनेशिया खिलाड़ियों ने 21-19, 23-21, 21-10 से हराने बीजा राउंड में प्रवेश मेलव्यो। भारत ने आ वर्षे बैंकॉक में BWF सुपर 500 टूर्नामेंट में भाग लेवा 27 खिलाड़ियों ने एक मोटी टुकड़ी मोकली छे। आईपीएल क्रिकेट में हाल अमदावाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटन्स और सनराइजर्स हैदराबाद वच्चे मुकाबलो चाली रह्यो छे। हैदराबाद की टीम टॉस जीतीने प्रथम बॉलिंग पसंद करी छे। छेल्ला अहेवाल मुजब गुजरात टाइटन्से 5 ओवर में 1 विकेटे 26 रन बनाव्या छे। गुजरात में गांधीनगर में एशियन वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में डीपीआर कोरिया ने उंचल पेंगे स्नेच में 136 किलो क्लीन एंड जर्क में 174 किलो वजन वर्ग में सुवर्ण चंद्रक जीतो। जारी मलेशिया ने गेंद कास्दान मोहम्मद अली के स्नेच में 122 किलो क्लीन एंड जर्क में 155 किलो और कुल 277 किलोग्राम वजन उठाई रजत चंद्रक मेव्यो। अंत में मुख्य समाचार फरी एक बार। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहा कि साइबर सुरक्षित भारत बनाने सरकार सतत प्रयत्नशील। केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में अगर महीने की आयात में आगे लगा पूर्ता विदेशी हूंडिया में भंडार। देशभर में 3G में लगाई नीट परीक्षा रद्द, पेपर लीक मामले लोगों ने सजा कराया। भारत में आगामी 14-15 तारीखे ब्रिक्स देशों ने विदेश मंत्रियों की बैठक और भारतीय शटलर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टीए थाईलैंड ओपन बैडमिंटन स्पर्धा में जीत थी भारत को विजय प्रारंभ करायो। आ साथ ज आकाशवाणी पर समाचार पूरा थे। हम आवती सवेरे 7 वगे 10 मिनिटे प्रादेशिक समाचार सांभ सकशो। नमस्कार।

0: सुर मधुरी।
1: विश्व प्रेमी सम्मेलन, निर्देशक दीना नाथ।
2: अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई? अरे अरे अरे अरे अरे, सिर्फ भीड़ ही नहीं, यहाँ तो एक शानदार पंडाल भी खड़ा हो गया। तो क्या यहाँ कोई सम्मेलन हो रहा है? लेकिन लहरों के मेले में सम्मेलन जैसी गंभीर चीज का क्या काम? लेकिन ठहरिए, पंडाल के बाहर लगे इस बोर्ड को जरा पढ़कर तो देख लूं। मोटे मोटे अक्षरों में हमारे मित्र मदन मोहन खन्ना लिख रहे हैं, विश्व प्रेमी सम्मेलन। विश्व प्रेमियों के सम्मेलन में मैं आप सब डेलीगेट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भाइयों, ये पहला अवसर है कि संसार भर के प्रसिद्ध प्रेमी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे हुए हैं। हर प्रेमी को इजाजत है कि वो दिल खोल कर अपनी दास्तान गम सुनाए, ताकि संसार सुने और देखे कि उसने दो दिलों को न मिलाकर क्या जुल्म किया है। प्रेमियों का अनुभव बड़ा कोमल होता है, वो बड़े भावुक होते हैं। इसलिए जो प्रेमी दूसरे प्रेमियों की दर्दनाक दास्तान सुनकर या अपनी प्रेमिका को याद करके रोना चाहे, वो कृपा करके पंडाल से बाहर चले जाए, क्योंकि क्योंकि प्रेमियों के आंसू कोई मामूली आंसू नहीं होते, एक तीनों का आंसू होता है जनाब। रोने पे हैं तो नदियों बह दे, पंडाल में कई बार ना आ जाए इसलिए पंडाल के बाहर आंसू खाने यानी वीपिंग बूथ लगाए गए हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर प्रेमी स्वयं स्टेज पर आकर अपना परिचय दे।
3: जी मैं फरहात हूँ।
2: भाइयों, आपके सामने विश्व के प्रसिद्ध प्रेमी फरहाद खड़े हैं। होगा पहाड़ निकले चुहे, वो भी मरे हुआ।
3: आप ठीक कहते हैं, मुझे कुछ भी न मिला, पहाड़ खोद कर उसमें मैंने नहर बनाई।
4: अकेले?
3: जी हाँ बिल्कुल।
2: और साहब अंदाजा लगाइए, मेरे पास पेशे यानी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था।
4: है? क्या पहाड़ तोड़ने के लिए डायनामाइट या बुलडोजर अवेलेबल नहीं थे?
3: अजी साहब छोड़िए, कोई हाथ बनाने वाला भी नहीं था।
4: ओहो, इतने बड़ा डैम बनाने के लिए कोई एक भी नहीं मिला आपको?
3: एज, आप सहायता की बात करते हैं। खैर साहब, 20 साल की मेहनत के बाद नहर तो बन गई, मगर एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई।
4: वो क्या मिस्टर?
3: मुझे हुक्म हुआ कि मैं नहर में पानी की जगह दूध डालूं।
4: वो किस लिए मिस्टर?
3: ताकि शर्त के मुताबिक वो मेरी बनाई हुई नहर में नहा सके।
4: ओ आई सी, दूध में नहाओ।
2: हाँ, ताकि दूध में नहाओ और पूछो करो।
4: मिस्टर महाराज, शीरी के डैडी ने आपको स्विमिंग पूल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा?
3: मैं क्या बताऊं साहब, मैं शीरी का प्रेमी हूँ, शीरी का डैडी नहीं।
4: I'm sorry. अच्छा साहब, फिर क्या हुआ?
3: अब और कुछ नहीं कहा जाता, गले का मुंह को आता है, बेसाख्ता मेरी जबान से शेर निकला ही चाहता है। मर जाएंगे पर हम कभी शिकवा न करेंगे, सर देंगे मगर यार को रुसवा न करेंगे, हम हश्र में इस खून का चर्चा न करेंगे।
5: आप कहाँ चले आ रहे हैं? आप नहीं जानते ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है?
6: जी मैं भी एक प्रेमी हूँ।
5: आप और प्रेमी?
6: और प्रेमियों को कोई खास मोर लगी होती है?
3: मैं
5: मालूम
6: सोनी के अलावा।
5: जी सोनी के दीवाने में मजी आने दिए जाए।
2: आइए भारत वर्ष से डेलीगेटर वाले
3: प्रेमियों, मैं भी आपकी तरह सताया हुआ एक प्रेमी, मैंने भी सोनी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आपको शायद मालूम नहीं, मेरी सोनी में कबाब खाने का बहुत शौक थी, और एक दिन जब मुझे उसको मिलना था, मैं कोई मछली ना पकड़ सका, बस चला, मैंने अपनी जान काट कर कबाब बनाया और अपने हाथों से सोनी की नजर की।
4: लेकिन मिस्टर महिवाल, जब सोनी आपकी दीवानी थी तो फिर आपको समाज के खिलाफ क्या शिकायत?
6: सुनिए तो सही,
0: سونی کی ننت کو ہمارا ملنا گوارا نہ تھا. اس نے ہمارے خلاف ایک بڑی خطرناک چال چل لی. سونی کا دریا پار کرنے والے پکے کرے کی جگہ اور اس کو مسئلے پکا بنا رکھ دیتا.
7: مسٹر منگوال, کیا میں سونی کو پہننے نہیں آتا تھا؟
8: جی نہیں.
7: بہت پیٹی, اس کے پاس سوئمنگ بیسٹ بھی نہیں تھا. بالکل میں کام کر لیا ہوتا میں. پھر کیا ہوا؟
0: پھر وہی ہویا جو ہم جیسے پریمیوں کے ساتھ پنڈا آیا. وہ ڈوب گئی, میں نے دوسرے کنارے سے چھلانگ بھی لگائی اور اس کو ہی پہنچ نہ سکیا, اور ہم دونوں کٹھے اس ظالم سماج کے پنجوں سے آزاد ہو گئے.
7: آپ نے تو مر کر دنیا سے خلاص پایا, مگر ہمارے ساتھ جو سماج نے ظلم کیا وہ آپ سن بھی نہیں سکے گا.
9: آپ سنائے ہم کون سن لیں گے؟
7: آپ ہے کون صاحب؟ جی میں رومیو.
10: رومیو, سنیے, اب آپ کے سامنے یورپ کے پرسدھ پریمی رومیو کھڑے ہیں. کیا آپ اپنے ساتھ وہ ساتھ بھی لائے جنہیں چھیڑ کر اپنی جولیٹ کو کھڑکی تلے بلاتے تھے؟ ذرا سنائیے تو ہم بھی سنیں وہ دھن.
7: وہ نغمہ میری پیاری جولیٹ کے لیے تھا, اب کس کے لیے؟ بتائیے بتائیے, شرمائیے نہیں, تبلے پر سنگت میں کر دوں گا.
10: اگر آپ سر میں نہیں ہے تو نہ صحیح,

0: दीवाना का सौदा ही।
1: आइए मजमू साहब, मन फैलाइए, यही कशिश है ये पढ़ा, और अपने लंबे आज की तजुर्बे से फैजियात कीजिए।
0: मुझे मेरी लैला मिलेगी।
1: देखिए मिस्टर कैश, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है और आप हमारे निमंत्रण पर भारत आए।
0: नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी लैला को ढूंढने आया हूँ।
1: समझ में सुना है लैला कोई खूबसूरत लड़की नहीं था और रात की तरह एकदम बात था।
0: जी हाँ, इसीलिए उसका नाम लैला रखा गया। मेरे दिल हाथों पे क्या जादू मोहब्बत ने मुझे अंधा बनाया लैला तेरी सारी सूरत ने।
1: लेकिन इसका मजबूत हूँ, हमारा मतलब है एक काली सी लड़की जिसके लिए आपने बीमारियों का रिकॉर्ड कायम कर रखा है, आखिर उसमें क्या था ऐसी बात?
0: मिस्टर रोमियो, लैला के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुन सकता। लैला की खूबसूरती देखनी है तो मजनू बनकर देखो। मजनू की निगाहों से देखो, साज बजा कर नहीं।
1: देखिए मिस्टर मजनू, मेरे सास के बारे में कुछ ना कहिएगा, मैं अपने सास से वो लखनऊ निकाल सकता हूँ जिससे एक लैला तो क्या दुनिया भर की लैला एक
0: खींची चाहिए हासिल करना सके। लैला खींची
1: बहस में ना करिए, बहस से कोई नतीजा नहीं निकालिए
0: साहब। आप मिस्टर रोमियो की जबान को लगा दीजिए वरना मैं बताना
1: की मेरी साहब। सुनिए, आप दोनों हमारे मेहमान हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। रोमियो साहब की दुनिया को कोई छीन नहीं सकता है। और मजनू भाई, लैला केवल आप ही की
0: लैला है। मेरी लैला, मुझे मेरी लैला।
1: मजनू भाई, ये विश्व प्रेमी सम्मेलन है, हम प्रेमिकाओं को मिलाने का काम नहीं करते।
0: अगर मुझे मेरी लैला नहीं मिलेगी तो मेरा क्या काम?
1: आप कह रहे हैं मजनू भाई,
0: अपनी लैला को ढूंढ ले, कर गई आने का वादा, एक जमाना हो गया, जिसमें मजनू को है बस लैला तेरा इंतजार।
1: मुझे खेद है मजनू साहब के वॉकआउट कर जाने से सम्मेलन का वातावरण फिर गंभीर हो गया है। मैं देख रहा हूँ कुछ प्रेमी आहें भर रही हैं, कुछ प्रेमी रोने के मूड में है। मुझे भी दो मिनट का अवकाश दीजिए, मैं जरा आंसू खाने में जाकर देखकर आंसू बहाने चाहता हूँ। देखे मैंने आपको किसकी याद में आंसू बहाने हैं?
0: जी है हीर की याद में, हीर की याद में।
1: जी मैं राजा हूँ,
0: मिस हीर का लवा,
1: प्रेमी राजा।
2: देखिए कल्चरल प्रोग्राम शुरू होने से पहले मेरी यही दरखास्त है कि सबसे पहले हम सब प्रेमियों का एक ग्रुप
1: फोटोग्राफर। बस जनाब, आप सब प्रेमी कैमरे की ओर देखें, स्माइल दें, मुस्कुराएं।
2: मुस्कुराएं, ये आप क्या

0: सोमनाथ महादेव मंदिर ना पुनः निर्माण ने 75 वर्ष पूर्ण थवा निमित्ते सोमनाथ अमृत पर्व की भव्य उजवणी करवामां आवी रही छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पण आ पर्व में सहभागी थया। तेमणे सोमनाथ मंदिर में भगवान सोमनाथ की महापूजा कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण करी लोकोने सुखाकारी माटे प्रार्थना करी।
1: ये सृष्टि

जिस शिखर पर है उसके पीछे अनगिनत कलाकारों तकनीशियनों का योगदान है। एक सदी की यात्रा के बाद आज भारतीय सिनेमा तकनीकी रूप से बहुत विकसित है, लेकिन जब सिनेमा अपनी राह बना रहा था, परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए कैमरे की अपनी भाषा और व्याकरण बन रहा था, उस दौर में लोक रंजन के प्रभावशाली माध्यम सिनेमा के जरिए अनेक कलाकारों ने दर्शकों के स्मृति पटल पर अपनी एक अमिट छवि अंकित करती थी। गुजरे दौर के एक विशिष्ट कालखंड में सिनेमा के पर्दे पर राज किया था

हिंदुस्तानी सिनेमा के शुरुआती दौर में पौराणिक आख्यानों, जादूगरी की तिलस्मी दुनिया के आसपास बुनी गई कहानियों पर आधारित फिल्मों की अधिकता थी। आम दर्शकों की अभिरुचि, बाजार की मांग, बजट और तकनीक की सीमित उपलब्धता के दबाव के चलते फिल्म निर्माताओं ने कॉस्ट्यूम ड्रामा युक्त पीरियड फिल्मों को ज्यादा तवज्जो दी। वहीं पौराणिक आख्यानों पर आधारित फिल्मों के नाम च

1919 में जोधपुर राजस्थान में जन्मे महिपाल सिंह सन 1940 में मुंबई आ गए और पहली बार नजर आए 1942 में आई फिल्म नजराना में। अभिनेता महिपाल ने होमी वाडिया, जेबीएच वाडिया, सौरभ मोदी और वी शांताराम जैसे

एक उल्लेखनीय फिल्म है। अभिनेत्री निरूपा रॉय, मीना सिन्हा और मीना कुमारी के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। बाबू भाई मिस्त्री की फिल्म हर्ष मनी भी अभिनेता महिपाल की एक प्रसिद्ध फिल्म है।

अनेक फिल्में हैं, लेकिन उनमें भी प्रसिद्ध फिल्में हैं अल हिलाल, नया बाजार, जन्म जन्म के फेरे, आन बान, तुलसीदास, अली बाबा और 40 चोर, अल्लादीन और जादुई चिराग, जबक, संपूर्ण रामायण, सुनहरी नागिन, बीन का जादू, जंतर मंतर, वीर भीमसेन, सती सावित्री, वीर घटोत्कच, बालक ध्रुव, रानी और लालपरी, जय संतोषी मां, गोपाल कृष्ण और संत रविदास की अमर कहानी। अभिनेता महिपाल की मशहूर फिल्म का ये गीत आज भी बेहद लोकप्रिय है।

दर्शकों में अभिनेता महिपाल के लिए जबरदस्त दीवानगी थी। पर्दे पर कई पौराणिक चरित्रों की भूमिका में दर्शकों ने उन्हें सराहा। कई अवसरों पर लोग श्रद्धा में भरकर उनके चरण तक छू लिया करते थे। महिपाल हमारे भारतीय सिनेमा के इतिहास

राष्ट्रीय फिल्मकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म अभिनेता महिपाल पर। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बाबा ये कहना
1: उदयपुर के पास वहाँ शूटिंग कर रहे थे, वो ऊंची सी दीवार थी,
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना में मिलने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मैं गाते गाते अब इस दीवार से जाती हूँ जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। बड़ी टेंशन में वो शॉट किया मैंने, छोटा नहीं गिरे मैंने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

प्यार झरना है और इस निर्झर में बह जाता है हमारा मन। नहीं रोक पाते हम प्रेम के निर्झर को, वो बहता जाता है जहाँ तक धरती है वहाँ तक है प्यार का आलम।

कतरा कतरा भीगता है मन, बूंद बूंद बरसती है यादें, हर्फ हर्फ झड़ते हैं ख्वाबों के नूर, नीलों भटकता है मन बेसबब, खोई खोई आंखें, बहका बहका ख्याल, और सदी तक मोहब्बत पर कायम रहने वाले लोग।

रफ्तार जिंदगी पर एक रोज विराम लग गया। घनी घटाएं, काले मेघ डर का साया बन गए। हरे नरम दूब सूखे पत्तों में तब्दील हो गए। किताब का एक ही पन्ना अलग अलग लाइनों में बदल गया। नाजुक नर्म अल्फाज ने आंखों में सैलाब भर दिया।

मोहब्बत एक कहानी है, एक राग है मोहब्बत, एक छंद है, एक कविता है मोहब्बत। मोहब्बत एक आदत है, जो लिखता है मोहब्बत अपनी जिंदगी में, वो नफरत की चिंगारी से दूर हो जाता है। जो किसी से सच्ची मोहब्बत करता है, वो सिर्फ खुशियों के रंग में डूब जाता है। जिसे मिलती है किसी की बेपनाह मोहब्बत, वो खुशकिस्मत इंसान बन जाता है।

मार्गदर्शन देने सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।

तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीडीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बैठ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीडीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक

0: मंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें वैसे भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता मिया, असम गण परिषद से अतुल बोरे और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चयन बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रूपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सोनियाल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों की प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संजीव, अगर